तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Non-stop music from the biggest movies. The Big Weekender.
1: All about the hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Weekender. Hold tight for 4 hours of the biggest Bollywood hits.
1: All weekend long.
0: Big 106.2. The Beat.

0: मैंने ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

106.2 पे इट्स टाइम फॉर द बिग बिंज विद मी सिड. इट्स अ वीकेंड. वीकेंड का टाइम बहुत ही मुश्किल से मिलता है. 5 दिन लगातार नॉन स्टॉप कड़ी मेहनत, खून पसीना बहाने के बाद 2 दिन जो आपके वीकेंड के मिलते हैं उसमें बिल्कुल भी 1 सेकंड भी आपका वेस्ट ना हो इन स्क्रोलिंग लुकिंग एट रिव्यूज. इस काम के लिए मैं आ गया हूं. मेरा नाम है सिड. ऑल द वे फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स आई एम गोना बी विद यू. एंड what is that one piece of OTT content? Could be a film, it could be a series that everybody is talking about. Reddit threads bhar gaye hain, kisi ki performance ki tareef ho rahi hai, koi log kisi ko gaali de rahe hain. To ye sab ke bare mein baat karne wale hain. What is that one show that we are going to talk about? Halka sa into the past jayenge, but not too much. 4 mahine pehle Vijay Verma ki Matka King released on Prime Video 17th of April. इसके बारे में आज बात करेंगे. द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स एंड फाइनली द वर्डिट, वेदर यू शुड स्ट्रीम इट और स्किप इट, कमिंग अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

0: 6.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट विजय वर्मा'स मटका किंग दैट रिलीज्ड ऑन प्राइम वीडियो ऑन द 17th ऑफ अप्रैल. सो इट्स बीन 4 months बट अभी तक लोग इसको देख रहे हैं, अभी तक इसके बारे में दिस डिस्कशंस गोइंग ऑन थ्रेड्स विच आर एक्टिव ऑन रेडिट. सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हियर्स व्हाट द ट्रेलर साउंड्स लाइक.
1: जिंदगी ब्रीज भट्टी वो आदमी था जिसने मौके पे खेलकर इतना पैसा कमाया कि सरकारी खजाना भी उसके सामने चिल्लर लगने लगा.
2: मटका किंग.
1: जिंदगी
0: एक सफर है सुहाना. सुहाना सफर है कि नहीं है ब्रिज भट्टी नाम के कैरेक्टर का, दैट्स व्हाट दिस शो इज अबाउट. अगर आप इफ यू लुकिंग फॉर अ न्यू क्राइम ड्रामा टू बिंज देन मटका किंग इज स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो. क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय नागराज मंजुले, आप जानते हैं फेमिलियर नेम बिहाइंड सैराट, झुंड जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं. स्टार्स विजय वर्मा, कृतिका कामरा, साई तमनकर, गुलशन ग्रोवर, बैडमैन भी इसके अंदर हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम है, सिद्धार्थ जाधव एंड जेमी लीवर. ये 1964-1975 के बीच में जो बॉम्बे का पीरियड था उसके बारे में ये शो है. इट फॉलोज ब्रिज भट्टी, एक कॉटन ट्रेडर है, ऊन के ट्रेडर, हु क्रिएट्स अ गैम्बलिंग गेम कॉल्ड मटका एंड स्लोली टर्न्स इट फ्रॉम एन एलीट पास टाइम इनटू अ मास phenomenon. So it's a very compelling plot. And इससे पहले कि show release हुआ, there was a lot of pre-release buzz. क्योंकि combination amazing है. भाई विजय वर्मा plus नागराज मंजुले equals to amazing ना, equal to almost scam 1992 वाला zone expect कर रहे थे. क्या उस expectation पे ये show खरा उतरा? Gonna come up in just a while. Comparison, was it a good comparison, a bad comparison? What are the good parts about Matka King, the bad parts about it, and finally whether you should watch it or not, coming up right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड, और आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट विजय वर्माज मटका किंग या प्राइम वीडियो का वो शो जो कि रिलीज हो गया था अप्रैल में. एंड द बिगेस्ट रीजन, हियर आर द गुड थिंग्स अबाउट द शो, व्हाई यू शुड स्ट्रीम इट, या द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट द शो. द बिगेस्ट रीजन एज एक्सपेक्टेड टू वॉच मटका किंग इज विजय वर्मा. ब्रिज भट्टी नाम के कैरेक्टर को प्ले करते हैं एंड द शो इज अबाउट गैम्बलिंग, सो इट्स वेरी इजी टू मेक द कैरेक्टर ऑल अबाउट ग्रीड, राइट. लेकिन ये ऐसा नहीं होता, उसको पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उसको रिस्पेक्ट चाहिए एंड किसी की जूती के नोक के नीचे उसे नहीं रहना. ही वॉन्ट्स टू गो इंडिपेंडेंट, डजंट वॉन्ट टू लाइक जस्ट बी द यस मैन फॉर समवन मोर पावरफुल, समवन रिचर, एंड दैट्स द रियली गुड एस्पेक्ट अबाउट हिज कैरेक्टर. इज वेरी गुड एट मेकिंग एम्बिशन फील डेंजरस. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, कि जब भी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इज द मेन कैरेक्टर इन अ शो, गैंगस्टर्स के बारे में कोई शो होता है, सो इट ऑलवेज काइंड ऑफ इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ इट इट टर्न्स आउट टू बी अ कार्टून कैरेक्टर. ऐसा बिल्कुल नहीं है, डजंट मेक इट कार्टूनिश, इट स्टेज काइंड ऑफ क्वाइट डार्क टिल द एंड. हाँ, वर्ल्ड बिल्डिंग इज ऑल्सो क्वाइट गुड. जब कोई पीरियड ड्रामा होता है तो इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मेकिंग इट फील लाइक कि आप सेट में गलती से घुस गए, कि फिल्म सिटी के किसी शूटिंग लॉट में आप घुस गए गलती से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. इट लुक्स लिव्ड इन, स्वेटी, टेक्स्चर्ड एंड या क्वाइट जेन्युइनली इन द 60s एंड 70s ऑफ बॉम्बे. सपोर्टिंग कास्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. साई तमनकर जैसे वेरी सीजन परफॉर्मर्स हैं, कृतिका कामरा, सिद्धार्थ जाधव, बैड मैन गुलशन ग्रोवर इज ऑल्सो देयर, ऑल डूइंग मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज. एंड एक्टिंग की तारीफ हो रही है एंड स्लो बर्न क्राइम ड्रामा, इफ यू लुकिंग फॉर देन दिस इज द शो दैट यू शुड बी बिंजिंग. एंड व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट द शो वाज द फैक्ट दैट एक चीज बहुत ही क्लियरली ये बताती है, द गैम्बलिंग इज इन रियली अबाउट मनी, इट्स नॉट रियली अबाउट द नंबर्स, इट्स अबाउट होप, उम्मीद, एंड होप कैन बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल एडिक्शन. सो द थीम इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग. कमिंग अप नेक्स्ट, व्हाट आर द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट विजय वर्माज मटका किंग. दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड.

0: 106.2 पर। Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on the Big Binge. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज?

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

So that's it for this episode of The Big Binge with me, Sid. Aap jante hain, jaise weekend aata hai, the one thing that you have to look forward to is this show, which saves you a lot of time. You know, you could go to so many websites and so many videos on YouTube and Reels on Instagram just to figure out and decide at the end of all of this over information ki kis show ko dekhen, kis OTT film ko dekhen, nahi dekhen, and then you end up kind of wasting a lot of time. So इस काम को आसान करने के लिए दिस इज द शो. टुडे वी स्पोक अबाउट मटका किंग, विजय वर्मा का वो शो जो कि अप्रैल में रिलीज हो गया था ऑन प्राइम वीडियो, एंड पीपल स्टिल कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. पीपल स्टिल कांट डिसाइड वेदर दे एक्चुअली एंजॉयड इट और डिडंट एंजॉय इट. सो या इनकी जो रिकमेंडेशन, अगर आपके पास कोई ऐसा शो है, कोई OTT मूवी है जिसके बारे में आपके मन में कंफ्यूजन है कि यार देखूं कि नहीं देखूं, यू नॉट एबल टू डिसाइड, इफ यू वांट मी टू सी इट बिफोर यू, या यू कैन ऑलवेज पुट मी इन द फायरिंग लाइन एंड सेंड मी योर रिकमेंडेशंस ऑन आर इंस्टा पेज, दैट इज 106.2 बिग एफएम, 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. वहां पर जाइए, लीव मी अ मैसेज. आज का शो आपको कैसा लगा? बुकेज, ब्रिक पैड्स, मोर देन वेलकम. आई एम सिड सेठ, SIDSETH, एंड आई एम गोना सी यू ऑन अ मंडे मॉर्निंग Sharp at 7 on The Big Breakfast. Till then, enjoy. Bye-bye.

इस हफ्ते ऑन नंबर 37 और नंबर 36 अगेन वी हैव गॉट अ रीमेड गाना फ्रॉम तू या मैं. आई हैव ऑलरेडी रेकमेंडेड दिस मूवी इनफ. इफ यू हैवंट सीन प्लीज वॉच इट एंड यू विल थैंक मी.

0: ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Coming soon on Big 106.2.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
4: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown, Big 106.2, the beat of Bollywood. Number 37.

35. कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

106.2 The Beat of Bollywood. कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th August शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। Zikr brings India's master storyteller Amandeep Khayal with his soul-stirring show Thak Thak for the very first time in Dubai. एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से at Gems Al Barsha National School. Doors open at 4:30 PM. Show begins at 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2. The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 31.

नंबर 31 फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है राइट हियर प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. मैं हूं मानसी. डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े साथ में, ऑफ कोर्स वरुण धवन. वैसे वरुण धवन इज गॉट अ ब्रिलियंट लाइनअप इन 2027 व्हिच इज 2027. ही इज ऑफिशियली सेट टू हेडलाइन यशराज फिल्म्स की फर्स्ट एवर हॉरर जॉनर की मूवी व्हिच इज डायरेक्टेड एंड रिटन बाय अभय पन्नू. प्रोडक्शन बिगिंस इन लेट 2026 विद अ लॉक्ड थिएट्रिकल विंडो फॉर 2027. वी ऑल्सो गॉट वरुण धवन की भेड़िया 2 इन 2027 एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपैंडिंग मैडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स. Varun Dhawan will reprise his role as Bhaskar, and the sequel tracks the escalating conflict between Bhediya and Betal, which was teased during the events of Thama. So, ये एक पूरा उनका multiverse है. Initially, Bhediya 2 2026 में release होने वाली थी, but now they are targeting 2027. And Bhediya 2 में, of course, with Varun, we'll get to see Kriti Sanon, who's looking stunning in Cocktail 2. The movie is available on OTT. अगर आपको gym जाने का motivation चाहिए, please watch Cocktail 2 and Kriti Sanon इस हफ्ते. Cocktail 2 से ही on number 30.

0: 20 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Happy, happy weekend playing you the top 40 biggest hits of the week. मैं हूं मानसी with the big Bollywood countdown. वैसे countdown तो सभी मुसाफिर fans का भी शुरू हो चुका है कि कब आएगा season 2. And of course, they've announced the season 2 and बहुत जल्द release होगा. Because season 1 ended with an unresolved finale. बहुत सारी theories चल रही है social media पे. Sudha returns to the cafe right before leaving for Singapore with her partner Vineet. And of course, उसने admit किया था that she still misses Chandar. साथ में प्रीति को मिल जाती है वो डायमंड रिंग जो चंदर उसे देने वाला था. ही वाज अबाउट टू प्रपोज. सो यस, कांट वेट फॉर सीजन 2. एंड आई आल्सो कांट वेट फॉर द न्यू म्यूजिक दैट दे इंट्रोड्यूस विद सीजन 2. आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद द एल्बम फ्रॉम मुसाफिर कैफे दिस वीक ऑन नंबर 26.

0: On number 24, we've got Shashwat Sachdev, Arijit Singh from the first installment of Dhurandhar. This is the Big Bollywood Countdown. मैं हूँ मानसी. I play you the top 40 biggest hits of the week. Top 5 गाने कौन से होंगे इस हफ्ते, जानने के लिए head to our Instagram page 106.2 Big FM. फिलहाल moving on to गाना number 23. And I so want to watch this movie in the theater. मुझे ना actually movie India जाके देखनी है, क्योंकि जो reels viral हो रही है, मतलब असली feels के साथ लोग इमरान हाशमी को ऑन द बिग स्क्रीन देखने जा रहे हैं. टॉकिंग अबाउट आवारापन 2, द फिल्म ओपन स्ट्रॉन्ग, नेटिंग ओवर 100 करोड़ डोमेस्टिकली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मूवी, एंड इट करेंटली स्टैंड्स एज अ कमर्शियल सक्सेस एंड रैंक्स एज द 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ 2026. ओरिजिनल आवारापन जब आई थी, जब रिलीज हुई थी, इट वॉज अ फ्लॉप, बट ओवर टाइम इट बिकेम अ कल्ट. Thanks to the music, music plays a very, very important role in this franchise. In fact, the sequel's emotional score features brand new melodies alongside the reimagined versions of the iconic hits like "To Phir Aao" and "Tera Mera Rishta." But original gaane bhi kamal hain. Awarapan 2 se is hafte on number 23. वो कहते हैं ना कि अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ. इसी के साथ ऑन 22 वी गॉट धुरंधर 2 से अगेन अ ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड गाना. Playing you the top 40 biggest hits of the week. Stay right here, enjoy your weekend. ये है Big Bollywood Countdown.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं. इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में. जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक For the very first time in Dubai. Ehsaas, chai ki garmahat aur dil ko chhu lene wale kisse at GEMS Al Barsha National School. Doors open at 4:30 PM. Show begins at 5:30 PM. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
1: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 23.

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Playing in the top 40 bangers of the week. This is the Big Bollywood Countdown. Keeping you company, I'm Mansi. Hope you're having fun, enjoying your weekend. वैसे इस वीकेंड पर, if you're looking for a good watch, a movie जो आपको इटली की टिकट्स बुक करने के लिए मजबूर कर दे, then do watch Cocktail 2. शाहिद कपूर, कृति सैनन and रश्मिका मंदाना, कुणाल दिया और एली की कहानी. While vacationing in Sicily, इनकी जिंदगी हो जाती है complicated because third wheeling करते करते कभी कभार दोस्त आपकी गाड़ी का रुख बदल देते. I'll not give you any spoilers. It is a complicated love story with great locations. Like I said, जैसे ही मैंने मूवी देखी, आई थॉट यार एक और बारी इटली जाना तो बनता है. ग्रेट म्यूजिक इज वेल ऑन नंबर 12 दिस वीक फ्रॉम कॉकटेल 2. वी हैव कविता सेठ, नीरज श्रीधर, ब्यूटिफुली रिक्रिएटेड ओरिजिनल गाना कॉकटेल से. इसी के साथ नंबर 11 पर धुरंधर 2 से राइट हियर ऑन बिग 106.2. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, कीपिंग यू कंपनी. आई एम मानसी.
0: नंबर 12.

इस हफ्ते भी नंबर 7 पे फ्रॉम वेलकम टू द जंगल दैट वाज ऊंचा लंबा कद. This is the Big Bollywood Countdown, playing you the top 40 biggest hits of the week. I'm Mansi, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood, and the biggest comeback ever. I'm talking about Awarapan 2. The music is, of course, the USP of the movie, and of course, Imran Hashmi. जाने जाते हैं for some super hit music, super hit songs. Movie कैसी भी हो, Imran Hashmi अगर हैं उस मूवी में तो गाने कमाल होंगे. सो इस हफ्ते नंबर 6 पे आवारापन 2 से तेरा मेरा रिश्ता 2.0, विच इज द ऑफिशियल 2026 रिप्राइज रीमेक ऑफ द आइकॉनिक 2007 हिट तेरा मेरा रिश्ता पुराना. एंड द ओरिजिनल सिंगर मुस्तफा जाहिद री रिकॉर्डेड द 2.0 वर्जन एंड इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च ऑन द 14th ऑफ ऑगस्ट. एंड मूवी की जो रिलीज थी उसके साथ टाइमिंग बहुत सही थी टू रिलीज दिस सॉन्ग. Already a hit. The movie has made more money than the first movie ever did, thanks to the millennials who are going to the theaters and reliving the Awarapan era.

0: तो दो वर्जन है इस गाने के, तेरा मेरा रिश्ता न्यू वर्जन एंड तेरा मेरा रिश्ता 2.0। न्यू वर्जन ऑफ कोर्स मुस्तफा जाहिद के आवाज में है। ये जो 2.0 वर्जन है ये मिथुन ने ऑफ कोर्स म्यूजिक दिया है एंड आवाज साज भट्ट की और साथ में सुबोध है। इस हफ्ते ऑन नंबर 6, मूविंग ऑन टू नंबर 5, a movie that's anticipated to be one of the biggest movies of 2026, Toxic, a fairy tale for grown-ups. जब ये गाना रिलीज हुआ था सोशल मीडिया पे तबाही मच गई थी। हैशटैग यश, हैशटैग कियारा, नहीं देखा है तो देखो गाना। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग विशाल मिश्रा की आवाज में दिस वीक ऑन नंबर 5।
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
4: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
1: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
5: Fasten your seatbelts. Kyunki Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai. From high speed chases down the autobahn to dramatic Don 2 style views, we're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Danu Properties. Coming soon on Big 106.2.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

0: म्यूजिक फॉर धमाल 4 ओरिजिनल गाना है गुलाबी साड़ी, जो मराठी में है। बहुत ही खूबसूरती से अगेन तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया है। This week on number 3, playing you the top 40 biggest hits of the week, Amansi with the big Bollywood countdown. Time for gana number 1. Kaun sa hoga is week? A lot of you guessed it right, and I'm not even surprised because we were all expecting this song to be number 1 because we were waiting for this song. But for now, playing you gana number 2 in just a bit. Cocktail 2 se recent times ka sabse khubsurat original gana. प्रीतम, अमिताभ भट्टाचार्य एंड राघव चैतन्य की आवाज। एंड लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ यू गॉट इट राइट। नंबर 1 पे इस हफ्ते कोई और गाना हो ही नहीं सकता था, बिकॉज सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ।
1: फिर आ मुझको रुला,
0: दोबारा एंड रील्स देखो आप। इंडिया में जब ये गाना स्क्रीन पर आया है, मतलब मिलेनियल्स ने भी वही किया है जो जेंजीज ने सही आ रहा देखते वक्त किया था, बट ऑफ कोर्स अ लिटिल लेस ड्रामा। बट आई एम लविंग द रील सो फार एंड द म्यूजिक। शिवम पंडित इज बैक एंड बैक लाइक हाउ दिस वीक ऑन नंबर 1 स्ट्रेट फ्रॉम आवर अपन 2। टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय, एंड मैं आपसे मिलूंगी कब? Monday ko 5 se 9 is when I keep you company. Until then, you stay right here for the best music. Do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. Enjoy your weekend. Number 1.

0: Wow. Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स. Countdown. Here we go. सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अपनी आपके साथ एंड संडे को रोज आया करूंगी 3 से 6 फॉर द बिग रेकमेंड्स। एंड आज दिस आवर वी आर गोना टॉक अबाउट अ रेकमेंडेशन। इंस्टाग्राम टोल्ड मी हर दूसरा बंदा जो है ना यार सुपरमार्केट में जाके यही मांग रहा है, किश्ता मांग रहा है। किश्ता एक आपको पॉट में मिलता है, उसके अंदर क्या होता है, मलाई होती है। बहुत लोगों ने खा लिया है, बहुत लोग खा चुके हैं, बहुत डिफरेंट POVs ओपिनियंस बाहर आ चुके हैं। लेट्स सी जब मैंने खाया मुझे कैसा लगा, बेसिक एवरेज लगा। विल जस्ट टॉक अबाउट इट, डिस्कस हियर। टिल देन यू कीप इट लॉक्ड बिग 106.2 पर।

was it actually mind blowing or not? Main kha ke aa chuki hu this viral trending dish on Instagram. What is it? Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड देयर इज द वन डिश जो बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर दैट्स कॉल्ड किश्ता. किश्ता एक पॉट में मिलता है, नथिंग, इट्स जस्ट ट्रेडिशनल क्रीम, मलाई जैसा टेक्सचर है. सुपरमार्केट में ये 49 दिरहम्स का मिल रहा है इतना बड़ा पॉट. पहली बात तो आप वो पूरा खा नहीं पाओगे, लेकिन नहीं ही खा पाओगे. मैं जितना मर्जी बड़े फूडी हो, आप वो पूरा पॉट अकेले नहीं खत्म कर सकते हो. और प्लीज़ इसको चैलेंज तो बिल्कुल मत लेना. वो जो क्रीम है वो हनी के साथ खा सकते हो आप. लोग पेस्ट्रीज पर यूज़ करते हैं इसको. एंड जेन्युइनली मेरे घर पे ये मलाई है यार. मैं मलाई इसको रस्क पर लगाकर या फिर बिस्किट्स पर लगाकर खाती थी आफ्टर माय मील. आई यूज्ड टू लव इट, एब्सोल्युटली लव इट. जो मेरे बड़े बड़े चीक्स हैं ना, ये वही मलाई खा खा कर आए हैं. लेकिन अगेन फिर से ये किश्ता जो है ट्रेंड पर जा चुका है, वायरल पर जा चुका है. हर दूसरा बंदा उसको खरीद रहा है. बट इज इट वर्थ इट? घर जाके खा लो ना फ्रिज में से निकाल के. आई मीन दैट्स इट. पूरा पॉट नहीं

तुम कर पाओगे यार, इफ यू आर लाइक ग्रुप ऑफ 5 to 6 पीपल, आपको इसे ASMR करके ऐसी वाली वीडियो बनानी इंस्टाग्राम पे, देन यू कैन एक्चुअली ईट इट और गेट इट. बट रादर देन दैट आई जस्ट स्किप इट. यू बातें करेंगे हम और डिशेस के बारे में और वायरल डिशेस के बारे में. टिल देन यू कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29 अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। टिकट्स फ्रॉम 199 दिरहम्स इंक्लूडिंग हाई टी एंड फ्री पार्किंग अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन डिस्ट्रिक्ट। वांट टू विन योर टिकट्स? कीप लिसनिंग टू बिग 106.2। Your next coffee run, brunch date, or foodie adventure starts right here on Big Recommends. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

हिमेश रेशमिया ट्रैक एंड आई जस्ट लव दिस ट्रैक है तंदूरी नाइट्स। मन करता है सुनते ही कि मैं आज रात को यार तंदूरी पनीर टिक्का तो खाई लूं। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। दिस इज बिग रेकमेंड्स एंड आई वुड रिकमेंड क्योंकि मैंने अब गाना सुन लिया है ये वाला, इट्स गोना बी लेट इवनिंग वेरी सून। तो आप अपने तंदूरी पनीर टिक्का की रेसिपी जो है मुझसे शेयर करो 0543091062 पर, ताकि आज मैं अपना तंदूरी पनीर टिक्का खा सकूं इन माय डिनर, बिकॉज ऑफ कोर्स आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय प्रोटीन एंड उसके साथ साथ मैं वेजिटेरियन भी हूं और संडे है, चीट कोड के चलते हुए मैं पनीर टिक्का तो डिजर्व करती हूं यार। सेंड योर रेसिपीज अक्रॉस 0543091062 पर, टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Viral hotspots. We have got you.
2: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ, and this is Big Recommends. This hour we're gonna talk about wine dish जो कि आपको महज 6-7 दिरहम में मिल रही है, viral हो रही है, people are going crazy over it. Supermarket में मिल रही है, इतनी easily available है. एंड अगर मुझे कोई ऐसी dish मिल जाए जो tasty भी हो, healthy भी हो, एकदम special हो और of course trend पर हो.
3: Maria Maria, Maria Maria.
2: बिकॉज बहुत सिंपल लॉजिक है यार मेरा, आप कम खाओ पर जैसे भी खाओ, जितना भी खाओ ऐश से खाओ. These two songs coming up your way. Singers King, after

वेजीज एंड विद दैट ट्रेडिशनल खुबूस ब्रेड. आप कौन सा खाने वाले? बिकॉज एक्चुअली अगर आई कॉल्ड देम अ लॉट ऑफ टाइम्स कि यहाँ पे वेजिटेरियन कुछ मिलेगा, आई एम श्योर कि ये सुनने के बाद मेरा फ़ोन पटाक से काट देते, बट उन्होंने उठाया नहीं पहले. अगर आप जा रहे हो इस वीकेंड टू ट्राई दिस, डू आस्क देम यार कि वेज ऑप्शन कोई अवेलेबल है, और अगर है तो डू लेट मी नो 0543091062. बट टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2.

एंट्री हो चुकी है इस खुबूस ब्रेड की. व्हाट वी कॉल एक्चुअली व्हाट यू कॉल इट हवाउशी. बिग 106.2 में हूं अवनी आपके साथ. दिस इज बिग रेकमेंड एंड इस वीकेंड का रेकमेंडेशन है दिस वायरल हवाउशी जो कि मिल रहा है आपको सुपरमार्केट्स में एट जस्ट रुपीज 6.9 दिरहम्स. एंड आप देखोगे यार ये सुपरमार्केट्स में ना कुछ सुपरमार्केट्स में बहुत क्राउड हो रखा है ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक डिश. व्हाई इज इट गेटिंग वायरल? बिकॉज एक तो इसका जो प्राइस है इट्स वेरी नॉर्मल 6.9 दिरहम्स. कम ऑन, इट्स फ्रेशली ग्रिल्ड विद जूसी मीट एंड डिफरेंट चॉइसेस ऑफ मीट. दे हैव सॉसेस,

बजे सिर्फ बिग 106.2 पर. फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, We're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties. Coming soon on Big 106.2. We have got your weekend sorted. The Big Recommends only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: चिपका ले सैया चिपका ले सैया
1: फेविकॉल से एग्जैक्टली चिपक जाती हूँ मैं. अगर मुझे किसी ऐसे रेस्टोरेंट का मिल जाए ना खाना जो मुझे पसंद आ जाए, ओ माय गॉड, देन फिर वहां से उठाना मुझे मुश्किल है. बिग 106.2 मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज बिग रिकमेंड्स एंड हम बात कर रहे हैं द वायरल टिन हवाउशी के बारे में जो कि सुपरमार्केट्स में मिल रही है एट 6.90 दिरहम्स. और मैं इस रील के ना कमेंट्स पढ़ रही थी. पीपल आर एक्चुअली गिविंग देयर ओन ओपिनियंस, अपना रिव्यू दे रहे हैं कि उनको कैसी लगी ये. पीपल आर सेइंग कि यार ठीक है, इट वॉज प्रिटी एवरेज टू बी ऑनेस्ट. ओके, किसी ने लिखा है इट्स यमी. देन देयर इज वन पर्टिकुलर कॉमेंट, मुझे पढ़ के हंसी आई, बट नो वी आर नॉट जजिंग एनी मोर. उन्होंने लिखा है वॉट इज खुबूज ब्रेड. क्या आपको पता है खुबूज ब्रेड क्या होती है? इफ यू नो इट, टेक्स्ट मी, मैसेज करो मुझे 0543091062 पर, या फिर आप DM भी कर सकते हो 106.2 बिग FM के इंस्टा हैंडल पर. टिल देन मैं जरा और कमेंट्स पढ़ती हूँ. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज बिग रेकमेंड्स। आज रेकमेंड करना चाहती हूँ मैं कि यार आज बाहर जाके खाना खाओ, अपने सैया जी को बोलो आज संडे है, आज बाहर का खाना ही बनता है। One thing. This is a love language, I'm telling you. जब भी आप अपने पार्टनर को, पार्टनर इन क्राइम को, अपनी धक-धक को, अपने बेटर हाफ को खाते हुए देखते हो ना ऐसे सुकून से, यू फील लाइक के यार एक खाना खा रहे हैं ये, और मुझे बस देखते हुए अच्छा लग रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? अपने पार्टनर को खाना खिलाना या खाना खाते हुए देखना, दीदार करना, भाई दैट इज ऑल्सो अ लव लैंग्वेज। यू अग्री और यू डोंट अग्री, टेक्स्ट करो मुझे 0543091062 पर। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

यही बोलोगे यार, एग्जैक्टली यही बोलोगे अगर ये वाली जगह JLT में आप चले गए एंड इफ यू लव रामेन, आप बोलोगे मुझे घर नहीं जाना यार। Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज बिग रेकमेंड। JLT में एक नया DIY रामेन लाइब्रेरी खुला है। I know कि आपका लाइब्रेरी से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक का, रामेन से है, लेकिन दिस इज द DIY रामेन लाइब्रेरी जहाँ पर आप जाकर अपनी मर्जी का क्या क्या डालना है आपको अपने रामेन में वो चूज कर सकते हो, खा सकते हो। एंड मैं तो यार मोस्टली बाहर जाके नहीं खाती हूँ, मैं घर पे बना के खाती हूँ व्हेन आई एम नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग। मैं आज वही खाने वाली हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया बिकॉज आई हैव वन मोर मूवी लेफ्ट फ्रॉम माई वॉच लिस्ट, वो जाके देखूंगी। पुरानी है यार, कोई बहुत ही पुरानी है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है रीविजिट करना। कौन सी आप मुझसे पूछ सकते हो 0543091062 पर। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

दिल्ली फिलहाल यहाँ से जा रही है। बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी, जिसका फिलहाल हो रहा है जाने का टाइम। बट आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो अस 106.2 बिग एफएम के इंस्टा हैंडल पर, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो अवनी यार के पेज पर AVNIY RRR। मिलते हैं कल फिर बिग मिक्स के साथ 1 to 5। टिल देन कीप लिसनिंग टू बिग 106.2।

0: We have got your weekend sorted. The Big Recommends only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th अगस्त शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। जिक्र ब्रिंग्स इंडियाज मास्टर स्टोरी टेलर अमनदीप खयाल विद हिज सोल स्टारिंग शो धक धक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दुबई। एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से एट जेम्स अल्बर्शा नेशनल स्कूल। डोर्स ओपन एट 4:30 PM, शो बिगिन्स एट 5:30 PM। Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
0: Great food, great finds, great weekends. This is Big Recommends on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Now listen.
3: Get up.
2: That's right.

0: फैसन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, We're taking you straight into a blockbuster adventure. We are keeping it a top secret, so start guessing. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Daniel Properties. Coming soon on Big 106.2. Big.
1: Yeah, check it out.
0: Big 106.2. The beat of

0: Agenda. The biggest Bollywood hits non-stop.
1: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। इस 29th August, शोर को पीछे छोड़ दीजिए और खो जाइए लफ्जों के साज में। Zikr brings India's master storyteller, Amandeep Khayal, with his soul-stirring show, Thak Thak. For the very first time in Dubai, एहसास, चाय की गर्माहट और दिल को छू लेने वाले किस्से at Gems Al Barsha National School. Doors open at 4:30 p.m. Show begins at 5:30 p.m. Tickets from 199 dirhams, including high tea and free parking. Available exclusively on District. Want to win your tickets? Keep listening to Big 106.2.
5: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
6: दो या चार?
5: चार।
6: कब तक वापस लौट आएगा?
5: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
6: चार या
5: पांच?
7: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: I love variety.

0: फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फ्रॉम हाई स्पीड चेजेस डाउन द ऑटोबान टू ड्रामेटिक डॉन 2 स्टाइल व्यूज, वी आर टेकिंग यू स्ट्रेट इनटू अ ब्लॉकबस्टर एडवेंचर. वी आर कीपिंग इट अ टॉप सीक्रेट, सो स्टार्ट गेसिंग. Get ready to pack your bags because the big check-in is coming your way. Presenting sponsor Danu Properties. Coming soon on Big 106.2. Big.
1: Yeah, check it out.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Now listen.
3: Get up.
2: That's right.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: प्रियंका चोपड़ा

0: क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।
1: तेरी